0: जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चकर चकर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah.